0: च दृष्कृतम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सरलार्थ श्रीमद् भगवद गीताय चतुर्थ अध्याय ज्ञान जोगे श्री भगवान अर्जुन के बोलछेन, पृथ्वीते जखनी धर्मेर ग्लानी हय अधर्म बेड़े जाए तखनी आमी शरीर धारण करे अवतार रूपे अवतीर्ण हये साधुदेर परिचान पापीदेर विनाश ओ धर्म संस्थापन करी। সকলের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।
1: এবারে পবিত্র